0: It's 10 o'clock.
1: It's 10 o'clock.
0: Hourly Time Check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4.
2: क्या आप बालों के गिरने, खुश्की और कमजोर बालों से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़ दें, क्योंकि आ गया है डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू आपके बालों की मुकम्मल हिफाजत के लिए। कुदरती अज्जा से तैयार करदा बालों की जड़ों को मजबूत बनाएं, बालों को दे कुदरती चमक और नरमी, खुश्की और हेयर फॉल में मददगार। डॉक्टर जैन हेयर ऑयल आपके बालों को इजायत फराहम करें, जबकि डॉक्टर जैन शैम्पू गहराई से साफ करके ताजगी देता है। सिर्फ चंद हफ्तों के इस्तेमाल के बाद महसूस करें मजबूत, घने और सेहतमंद बाल। अपनी खूबसूरती में इजाफा करें और अपने बालों को दें बेहतरीन केयर। आज ही इस्तेमाल करें डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू, क्योंकि खूबसूरत बाल आपकी पहचान है। तो पता याद रखिए, हमजा जनरल स्टोर, न्यू बदरसूटल, टांग सिटी। मोबाइल नंबर 0344-93-63-780। व्हाट्सएप नंबर 0342-26-48-435।
3: एक्नी है और ऑयल का मसला है, मजीद मालूमात के लिए 0342-311-2292 पर कॉल कर सकते।

0: रेडियो अमन नेटवर्क न्यूज एंड इंफॉर्मेशन स्टेशन। वेलकम टू रेडियो अमन 88.4। यू आर लिस्निंग रेडियो अमन नेटवर्क।
1: वी गॉट मोर हिट्स फॉर यू, सो स्टे ट्यून्ड।
2: 88.4 FM।
3: क्या आप बालों के गिरने, खुश्की और कमजोर बालों से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़ दें, क्योंकि आ गया है डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू आपके बालों की मुकम्मल हिफाजत के लिए। कुदरती अज्जा से तैयार करदा बालों की जड़ों को मजबूत बनाए, बालों को दे कुदरती चमक और नरमी, खुश्की और हेयर फॉल में मददगार। डॉक्टर जैन हेयर ऑयल आपके बालों को इजायत फराहम करें, जबकि डॉक्टर जैन शैम्पू गहराई से साफ करके ताजगी देता है। सिर्फ चंद हफ्तों के इस्तेमाल के बाद महसूस करें मजबूत, घने और सेहतमंद बाल। अपनी खूबसूरती में इजाफा करें और अपने बालों को दें बेहतरीन केयर। आज ही इस्तेमाल करें डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू, क्योंकि खूबसूरत बाल आपकी पहचान है। तो पता याद रखिए, हमजा जनरल स्टोर, न्यू बनारसी होटल, टांग सिटी। मोबाइल नंबर 0344-93-63-780। व्हाट्सएप नंबर 0342-26-48-435।
4: चाहतों के रंग, अमन के संग, अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क।
1: योर म्यूजिक, योर रिक्वेस्ट।
5: दिस इज रेडियो स्टेशन, रेडियो अमन।

0: You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: Welcome to Radio Aman 88.4.
3: क्या आप बालों के गिरने, खुश्की और कमजोर बालों से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़ दें, क्योंकि आ गया है डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू आपके बालों की मुकम्मल हिफाजत के लिए। कुदरती अज्जा से तैयार करदा बालों की जड़ों को मजबूत बनाए, बालों को दे कुदरती चमक और नरमी, खुश्की और हेयर फॉल में मददगार। डॉक्टर जैन हेयर ऑयल आपके बालों को इजायत फराहम करें, जबकि डॉक्टर जैन शैम्पू गहराई से साफ करके ताजगी देता है। सिर्फ चंद हफ्तों के इस्तेमाल के बाद महसूस करें मजबूत, घने और सेहतमंद बाल। अपनी खूबसूरती में इजाफा करें और अपने बालों को दें बेहतरीन केयर। आज ही इस्तेमाल करें डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू, क्योंकि खूबसूरत बाल आपकी पहचान है। तो पता याद रखिए, हमजा जनरल स्टोर, न्यू बनारसी होटल, टांग सिटी। मोबाइल नंबर 0344-93-63-780, व्हाट्सएप नंबर 0342-26-48-435।
2: Welcome to Radio Aman 88.4.
4: चाहतों के रंग, अमन के संग, अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क।
5: बीमारी हक दे अवेलाजी सुनत अमल, अवेलाजी सुनत अमल ले।
6: اوس کچیری تاسو تا دا سے امراض بھی چی تاسو ورنا دیر پریشان ایو او دیر گرزی دلی کڑی دلی ہو دیر گرزی دلی کڑی دلی ہو
5: نو بالکل مایوسکے گئی ماں مایوسکے گئی ماں الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ سٹی تا تشریف راوڑے او ده حکیم مولانا نور الهدى سیبنا پل علاج ترلاسه کولی شی
6: او ده نور معلوماتو ده پارا پا ده نمبر کال کولی شی
5: 0319-55-23-404
0: You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.

जी जनाब, आज भी एक नया दिन है, 9 जून 2026 का महीना, जो कि गर्म और मरतूब महीना होता है, और जो गर्मियों की जान बसी हुई है ना, वो जून के अंदर होती है। तो जनाब, जून का महीना सख्त गर्म महीना होता है, लेकिन अल्लाह ताला की जात के क्या कहने हैं कि जनाब, हर महीना अपने साथ बेशुमार जो है नेमतें लेकर आता है, बेशुमार फायदे भी लेकर आता है। तो जनाब, उम्मीद है कि इस जून के महीने के अंदर अल्लाह ताला की ढेर सारी नेमतों को, ढेर सारे मौके जो अल्लाह ताला ने इस मौसम के अंदर बनाए हैं, जैसे कि स्विमिंग पूल को एंजॉय करना, नहाना, पानी का लुत्फ लेना, ये भी आपको सिर्फ इन्हीं जून जुलाई के महीनों में जो है दिल करता है, और इन महीनों के अंदर ही जनाब घूमने को भी दिल करता है, पहाड़ों में जाने को दिल करता है, वादियों में जाने को दिल करता है, पिकनिक पर पिकनिक मनाने को दिल करता है, और छुट्टियां जनाब क्या कहते हैं जनाब, पहाड़ों के दरमियान सारे को, यानी कि ये सारी चीजें वो हैं जो गर्मियों से रिलेटेड हैं। बहुत सारे लोग गर्मियों से नफरत भी करते हैं, लेकिन भाई गर्मियां अपने साथ बेशुमार जो है खुशियां भी लेके आती हैं, अगर हम इनको सिर्फ गर्मी की दिक्कत को निकाल के देखें। और हमेशा अपनी जिंदगी के अंदर नेगेटिव चीजें बहुत कम होती हैं, पॉजिटिव चीजें बहुत ज्यादा होती हैं। जब आप गर्मी को देखते हैं तो एक मसला आपको सिर्फ गर्मी का दरपेश होगा कि लाइट का इशू है, ये ठंडे पानी का है, लेकिन और बहुत सारी नेमतें जो आपको पूरा साल मुयस्सर नहीं होती हैं, इस महीने के अंदर गर्मी के सीजन के अंदर आपको दस्तियाब होती हैं। तो इसी तरीके से हमेशा जिंदगी के अंदर हम नेगेटिव चीजों को ज्यादा मैटर करते हैं, हालांकि वो बहुत थोड़ी होती है, नेगेटिविटी बहुत कम होती है, लेकिन हम उसको पहाड़ बना के सामने रखते हैं, और पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा होती है जिसको हम इग्नोर करते हैं। तो जनाब, हर मौसम अल्लाह ताला का, हर मौसम को खुशी के साथ एंजॉय करना है, और उसके फायदों से और उसके बेनिफिट जो है उनको अपनी जिंदगी के अंदर लेके आना है। लेकिन जहाँ पर थोड़ा बहुत आप लोगों को प्रॉब्लम रहता है गर्मी के अंदर, स्किन प्रॉब्लम, स्किन अगर आपकी काली हो रही है, या तपिश की वजह से स्किन आपकी डिस्टर्ब हो रही है, या फिर आपको गर्मी दाने निकल रहे हैं, या पिंपल्स वगैरह हैं, तो ये थोड़े बहुत मामलात हैं, इन लोगों को आप कवर कर सकते हैं केसन नेचुरल पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स, क्योंकि हम हर मौसम को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, और हर मौसम के इफेक्ट को हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये किस तरीके से आपकी स्किन के ऊपर असरअंदाज होता है। दैट्स व्हाई हमने आपके लिए हर मौसम के एतबार से प्रोडक्ट्स डिजाइन किए हैं। जब आप इन मौसम के अंदर हमारी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, सो डेफिनेटली आप लोगों को उन फिक्रों से, उन मसाइल से छुटकारा मिलता है, जैसे कि इस सीजन के अंदर बहुत ज्यादा पसीना और ऑयल का मसला रहता है, तो केसन के फेस वॉश आप यूज कीजिएगा, आपका ये मसला हल होगा, और आपकी स्किन के ऊपर ऑयल कंट्रोल होगा, जिसकी वजह से ना ही आपको पिंपल्स निकलेंगे, ना ही आपको गर्मी दाने निकलेंगे, ना ही आपकी स्किन खराब होगी। और अगर आपको ये परेशानी है कि जनाब गर्मी के अंदर आपकी स्किन खराब हो जाती है, तो केसन का ज़ाफ़रानी फार्मूला साबुन का इस्तेमाल कीजिए। बहुत सारे लोग गर्मी के अंदर क्रीमें नहीं लगाते हैं, वो कहते हैं जनाब इतना पसीना है, क्रीम स्किन के ऊपर ठहरती नहीं है, तो भाई ऐसे लोगों के लिए ये हमारा साबुन है, ठीक है जनाब, केसन का ज़ाफ़रानी फार्मूला साबुन, जो कि खालिस तौर पर जो है नेचुरल अज्जा से बनाया गया है, जैसे कि संदल है जो कि ठंडक पहुंचाता है आपकी स्किन को, जैसे कि हल्दी है जो कि आपकी इन्फेक्शन को खत्म करती है, क्योंकि जनाब गर्मी के अंदर पसीने और ऑयल की वजह से बहुत ज्यादा आपकी स्किन जो है वो इन्फेक्शियस हो जाती है, ठीक है जनाब। और साथ साथ में इसके अंदर ज़ाफ़रान है जो आपकी स्किन एज ए एंटीऑक्सीडेंट काम करता है, एज ए सन ब्लॉक काम करता है। तो जनाब गर्मी के अंदर अगर अभी तक आप लोग डिफरेंट किस्म के सन ब्लॉक यूज करते रहे हैं अपनी स्किन को महफूज रखने के लिए, तो इस गर्मी के अंदर भाई केसन का ज़ाफ़रानी साबुन अपने करीबी दुकानदार से खरीदिएगा, ठीक है, करीबी जनरल स्टोर से केसन का ज़ाफ़रानी साबुन, जो कि 200

साबन आपकी स्किन के ऊपर एक अलग से रिजल्ट छोड़ता है। जी जनाब, चाय के कप के साथ बिल्कुल जी मेरे सामने चाय का कप आ चुका है, दूध पत्ती का कप। अगर वीडियो होती मैं आपको दिखा देता, और वो कप के जिसके ऊपर बलाई भी ठहरी हुई है और साथ में एक अदर इलायची का नक्शा भी नजर आ रहा है, तो सोचिए कि ये चाय कितनी जायके वाली होगी। और पीने में, हाँ जनाब, एक घूंट जब अंदर जाता है तो जनाब अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने को दिल करता है कि चाय, हाँ जी चाय। वो कहते हैं एक मिजाइल सी मैंने वीडियो कल देखी, तो एक बंदा कह रहा था कि भाई चाय जो है गर्मी के अंदर नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि चाय जो होती है ना ये आपकी प्यास खत्म कर देती है। ये हकीकत है, ये बिल्कुल हकीकत है कि जब आप चाय पी लेते हैं तो आपको प्यास नहीं लगती है। जिस बंदे को बहुत ज्यादा प्यास लगती है ना, वो चाय का एक कप पी ले गरम गरम, उसको ये प्यास को बुझा देती है। चाय जो होती है ना, चाय को प्यास को बुझा देती है। तो वो कह रहे थे यार बड़े नुकसान हैं चाय के, वो चाय के नुकसान गिनवा रहा था। चाय पीने से जो है प्यास बुझ जाती है गर्मी में, जिसकी वजह से जिस्म के अंदर पानी की कमी हो जाती है और फिर बहुत सारे मसले हो जाते हैं। चाय जो है जनाब इसको ज्यादा पीने से जो है मैदा खराब हो जाता है और ये बहुत सारे प्रॉब्लम पैदा करती है। चाय जो है वो नींद को डिस्टर्ब कर देती है, चाय जब पीते हैं तो फिर जो है नींद नहीं आती। तो आखिर ऊपर कहते यार मेरा सर दुखने लगा है, कड़क सी चाय मिलेगी? कहते इतने मैंने तुम्हें नुकसान बताए कि मेरा सर दुखने लग गया, कोई एक कड़क सी चाय मिलेगी? जो धोखे के बाद सबसे पहली चीज है जो आपको बेदार करती है, तो वेकअप डियर एस मिल्खा, वेकअप पहाड़पुर एंड वेकअप टांग वालों।

जी जनाब, केसन के टी टाइम में आपको ढेर सारा वेलकम। मेरी चाय साथ साथ में चल रही है, साथ साथ में बातें भी चलेंगी। और केसन की बातें, जी जनाब, केसन नज्म पाकिस्तान की बातें, और इतने ढेर सारे प्रोडक्ट जो हमने आप लोगों के लिए बनाए हुए हैं जनाब, अमेजिंग किस्म के हमने रिजल्ट क्या डाले, हमने मेहनत की है भाई, कोशिश की है, शिफा देने वाली अल्लाह ताला की जात है। और ये बिल्कुल शिफा अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन मेहनत अल्लाह ताला ने इंसान के हाथ में रखी है कि कोई किसी के लिए कितनी एफर्ट करता है। आज तक कंपनियों ने आपके लिए बहुत सोचा कि आपको जोड़ों के दर्द से निजात दिलाएं, आपको पट्ठों के दर्द से, आपको कमर के दर्द से निजात दिलाएं, तो उन्होंने अपनी तरफ से अपनी कोशिश की और अपने सोच के मुताबिक, अपने रिसोर्सेज के मुताबिक, और जितना फहम और जितना इल्म उन कंपनियों के पास है उन्होंने उसके ऊपर 100% लगा दिया। कोई भी कंपनी जब प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो सामने के ना उसके अंदर वो कोई गुंजाइश नहीं छोड़ती है। हर कंपनी की ये कोशिश होती है कि 100% ये प्रोडक्ट हम अच्छी बनाएं ताकि 100% लोगों को रिजल्ट मिले, और 100% लोगों को जब रिजल्ट मिलेगा तो हमारी सेल आसमान को जाके छुएगी। कोई ये नहीं सोचता, कंपनी का मालिक, मैं भी कंपनी का मालिक हूँ, और ये नहीं कि चलो जी 50% वाला रिजल्ट वाली प्रोडक्ट बना लेते हैं, जब चल जाएगी तो फिर 100 नहीं। हर मालिक की यही ख्वाहिश होती है कि ऐसी प्रोडक्ट बनाए जिसमें 100% लोगों को जो है रिजल्ट मिले। लेकिन फिर जब बन जाती है प्रोडक्ट तो वो कुछ लोगों को रिजल्ट देती है, कुछ लोगों को नहीं देती। उसकी वजह ये होती है कि उन्होंने अपनी फहम के मुताबिक, अपने नॉलेज के मुताबिक प्रोडक्ट तैयार की होती है, जो उनको पता होता है कि भाई इस तरीके से बनाए। अब हर किसी का इल्म एक जैसा नहीं होता, जिसका इल्म किसी से बढ़कर है तो वो आपको उससे बढ़कर चीज बनाकर देगा और उसके रिजल्ट उससे बढ़कर होंगे। तो जनाब बहुत सारी कंपनियों ने आपको दर्द के तेल बनाकर दिए, इस वक्त आप लोगों के पास मौजूद भी होंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सिर्फ जड़ी बूटियों से बने हुए तेल हैं, ठीक है जनाब। लेकिन केसन ने आपको दर्द से आजादी का जो तेल बनाकर दिया है वो शुतुरमुर्ग की अमेजिश से है। और शुतुरमुर्ग का तेल लोग सोचते होंगे कि क्यों भाई, आज तक हमने नहीं सुना। तो पाकिस्तान में सिर्फ 3 कंपनियां ऐसी हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया चाइल्ड को यूज कर रही है, उनमें अल्हम्दुलिल्लाह एक आपकी केसन कंपनी है, ठीक है जनाब, प्राइस में सबसे इकोनॉमिकल, और तीसरे नंबर के ऊपर हम हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया चाइल्ड बनाकर आप लोगों को दे रहे हैं। वजह क्या है कि हमारे माहिरीन को पता है

0: एक आम जड़ी बूटियों वाला तेल कहाँ तक काम करता है और एक जो शुतुरमुर्ग का तेल है, क्योंकि शुतुरमुर्ग का जो तेल है ना उसके भी अपना एक टेक्सचर है, उसकी जो अंदर की साख्त है, तेल की साख्त है वो इंसानी साख्त के साथ मिलती जुलती है बिल्कुल। और जब वो आप इंसानी स्किन के ऊपर लगाते हैं, शुतुरमुर्ग की चर्बी से हासिल किया गया तेल, तो वो बहुत ज्यादा मैच करता है आपकी स्किन के साथ, और वो स्किन का के अंदर जो ऑयल होता है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे भाई स्किन के अंदर तो खून होता है जी, ये केसर वाले क्या समझाते हैं हमें,
1: दर्द से आजाद।
0: स्किन के अंदर तो क्या होता है, स्किन के अंदर तो ऑयल नहीं होता, स्किन के अंदर तो गोश्त होता है और जो है खून होता है। तो नहीं भाई, ये जो आपके स्किन से स्किन आपके चेहरे से जो निकल रहा होता है ये क्या होता है, ये ऑयल होता है। सेबेशियस ग्लैंड्स हैं आपके बॉडी के अंदर जो इसको एक्सक्रीट करते हैं, आपके जिस्म से निकलता है। तो जनाब ये ऑयल जब आप लगाएंगे ना, शिफाए दर्द ऑयल केसन का, इसके अंदर एक खूबी जो किसी और ऑयल के अंदर आपको नहीं मिलेगी वो ये है कि ये फौरी तौर पर आपकी स्किन के अंदर जज्ब हो जाता है। जैसे आप लगाएंगे ना तो 3-4-5 मिनट जैसे मालिश करेंगे तो ये नहीं है कि आपके कपड़े खराब होने लगेंगे, आप तेल लगाएंगे तो कपड़े खराब हो जाएंगे या फिर कपड़े चेंज करेंगे, नहीं, ये बिल्कुल पानी की तरह आपके स्किन के अंदर जज्ब हो जाता है, पता भी नहीं चलता कि आपने ऑयल लगाया था। ये खूबी है इसकी, और यही वजह है कि जब ये ऑयल इन्हीं जड़ी बूटियों को, जैसे कि यूकलिप्टस है, जैसे कि विंटर ग्रीन है, जैसे कि ऑलरिसिन कैप्सिकम है, ये तीन जड़ी बूटियां हैं जो कि दर्द को उठाती हैं, और शुतुरमुर्ग का तेल जो है वो पट्टों के अंदर जान डालता है, तो ये उस उन्हीं को बहुत तेजी के साथ आपके जिस्म के अंदर तक ले जाती है। और यही वजह है कि कुदरती तौर पर आपको शिफा मिलना शुरू हो जाती है, कुदरती तौर पर। एक तो आप लोग टैबलेट्स लेते हैं जनाब, गोलियां लेते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, वो केमिकलाइज रिलीफ होता है भाई, ठीक है, केमिकलाइज रिलीफ होता है। लेकिन जब आप केसन का शिफा दर्द इस्तेमाल करते हैं तो ये नेचुरल वे पर, कुदरती तौर पर आपको शिफा मिलने का अमल जो है शुरू हो जाता है। और मैंने आपको बहुत दफा ये प्रोडक्ट बहुत डिटेल के साथ बताई है कि भाई ये किस तरीके से आपकी बॉडी के ऊपर काम करता है। जो आम पेन किलर होते हैं, जो पढ़े लिखे लोग मुझे सुन रहे होंगे, मेडिकल के लोग हैं, फार्मासिस्ट हैं या मेडिकल के स्टूडेंट हैं, वो इन बातों को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि भाई मैकेनिज्म क्या होता है किसी भी प्रोडक्ट का आपकी बॉडी के अंदर। और जो पेन किलर आप खा रहे होते हैं उन्होंने आपके उन सिग्नल्स को ब्लॉक करना होता है जो आपके दिमाग को जा रहे होते हैं, यानी कि आपको जिस्म के किसी हिस्से के अंदर अगर दर्द कहीं पर हो रहा है तो ये दिमाग फैसला करता है कि हो रहा है कि नहीं हो रहा, ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है। जैसे कि आप अभी अभी अभी अभी के अभी अगर आप एक बाजू निकालें अपना और बाजू के ऊपर ऐसे थोड़ा सा क्या कहते हैं इस तरह की चुंडी मारें ऐसे कर, तो 1 सेकंड के भी कितने हिस्से में आपको फौरन पता चल गया कि यहाँ पर कुछ हुआ है। आपने जैसे ही जिस्म को छुआ, चुंडी काटी आपने यहाँ पर, फौरन से 1 सेकंड भी नहीं होता और आपका दिमाग बता देता है कि यहाँ पर कुछ हुआ है। बिल्कुल इसी तरीके से आपके बॉडी के जिस हिस्से के ऊपर दर्द हो रहा होता है तो सिग्नल जा रहे होते हैं, ये बेसिकली सिग्नल जा रहे हैं। अगर ये सिग्नल डिस्टर्ब हो जाए यहाँ से तो आप कुछ भी करते रहें आपके दिमाग को पता भी नहीं चलेगा। मैंने आपको उस दिन बताया था, एक शुगर का मरीज था, वो बेचारा दफ्तर से जब निकला तो क्या हुआ, उसका पाँव जो है ना वो साइलेंसर के ऊपर आ गया, इंजन के ऊपर आ गया, और उसका पाँव जो है पूरा रास्ता जलता रहा, उसे पता भी नहीं चला। हालांकि थोड़ा सा दर्द हो जाए तो इंसान को पता चल जाता है ना, लेकिन ये चूंकि सिस्टम होता है, उसके सिग्नल ब्रेक थे, ठीक है जनाब। उसको शुगर का मरीज जो होता है उसको नर्व्स का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, नर्वोपैथी का शिकार होता है, उसका जिस्म सुन हो जाता है। सुन हो जाने का मतलब ऐसे कुछ भी आपको फील नहीं हो रहा था, सुन जिस्म आप आग के ऊपर भी रख दें तो कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो वो बेचारे का पाँव जल गया, घर पहुंच गया, लेकिन उसे पता भी नहीं था कि उसका पाँव जल गया है। हालांकि फौरन पता चल जाता है ना, थोड़ा सा छुए, लेकिन जब ये निजाम आपका ठीक हो, और जब निजाम ठीक ना हो तो फिर पाँव जल जाता है, फिर आपके दिमाग को भी पता नहीं चलता। तो जो मेडिसिन होती है वो यही काम करती है कि वो इन सिग्नल्स को तोड़ देती है, ब्रेक कर देती है, ठीक है जनाब। वो सिग्नल आपके दिमाग तक नहीं पहुंचते और आपको पता भी नहीं चलता, और गोली आप गोली खाने के बाद आपको लगता है कि भाई ये गोली ने काम किया है। गोली ने दर्द को खत्म नहीं किया होता, गोली ने उन सिग्नल्स को, उन मैसेजेस को ब्लॉक कर दिया होता है जो आपके दिमाग को पहुंच रहे होते हैं। ये मेडिकल की टर्मिनोलॉजी जो है, COX-1 COX-2 इनहिबिशन जिसे कहा जाता है, उसके अंदर यही काम हो रहा होता है कि गोली दर्द को खत्म नहीं करती, गोली उन मैसेजेस को खत्म कर देती है जो आपके दिमाग को जा रहे होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है वक्ती तौर पर उसने, अब उस गोली का असर है 6 घंटे, वो 6 घंटे तक मैसेजेस को रोके रखे कि 6 घंटे तक आपके दिमाग को मैसेज नहीं जाएंगे कि यहाँ पर दर्द हो रहा है। जैसे 6 घंटे गुजरेंगे फिर से वही मैसेज आपके दिमाग को जाना शुरू हो जाते हैं और आपका दिमाग कहता है यहाँ फिर दर्द हो रहा है, फिर दर्द हो रहा है। हालांकि दर्द आपका मुसलसल था, उस वक्त भी था, गोली खाने से वो मैसेजेस रुक गए, ठीक है जनाब। जैसे गोली का असर हुआ फिर वो मैसेज दिमाग को जाना शुरू हो गया। बताने का मकसद क्या है, ये केमिकलाइज एक एक्शन होता है कुछ वक्त के लिए जब आप टैबलेट लेते हैं तो ये आपके जिस्म के साथ हो रहा होता है। लेकिन जब हम आपको बोलते हैं कि आप नेचुरल तरीके से किस तरीके से दर्द से आराम हासिल कर सकते हैं तो ये परमानेंट हल होता है। जैसे कि केसन शिफा है, दर्द एक नेचुरल रिलीफ है आप लोगों के लिए, जो आपके जॉइंट्स आपके पेन है, अर्थराइटिस के पेन है, कमर का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, पट्टों का दर्द है, रिंगड़वा है, शेटिका पेन है। शेटिका पेन बहुत खतरनाक होता है जनाब, शेटिक पेन जिसे कहा जाता है। एक एक आपकी एक टांग के या मोहरों से दर्द शुरू होगा और पूरी टांग के अंदर रहेगा। अल्लाह को जान देनी है, मैं आज आपको एक कहानी बता रहा हूँ। ये स्टोरी उस वक्त की है जब हमने ये शिफाय दर्द लॉन्च किया था और हम एक डॉक्टर के पास गए पुशा पुल के ऊपर। ये रेडियो पैगाम को जो लोग सुन रहे होंगे ना या 91 को सुन रहे होंगे वो मेरी बात की बिल्कुल समझ रहे होंगे कि मैं किस डॉक्टर की बात करूं। वहां पर है डॉक्टर कामरान बलोच, ठीक है जी ना। तो शुरू शुरू में हमने डॉक्टर्स को विजिट किए थे कि ये तो डॉक्टरों की भी प्रोडक्ट है, तो उन्होंने कहा था कि चलो इसके हमें आप सैंपल दे दें और फिर हम आपको बताएंगे। तो जनाब उन्होंने वो सैंपल हमसे ले लिया। हमारी उनसे एक महीने के बाद मुलाकात हुई तो हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि खलील भाई ये आपकी प्रोडक्ट इतनी लाजवाब है, मैं अपने लिबर्टी असिस्टेंट का इतने अरसे से इलाज कर रहा था। डॉक्टर हैं डॉक्टर कामरान बलोच और पुशापुर डेर इस्माइल खान के हदूद में आते हैं, उनके लिबर्टी असिस्टेंट थे। उनको यही एक टांग का दर्द था, शेटिका पेन जिसको कहा जाता है, ठीक है ना। और उसको बेचारे को इतने पैसे लग गया, ये तो उसने 3-4 दिन इस्तेमाल किया है और हम हैरान रह गए कि यार ये तो मैजिक है कोई। हमारी मेडिकल की दवाएं टैबलेट इंजेक्शन भी इतना अच्छा काम नहीं करते जितना कि ये कर रहा है। आप कोई अगर मुझे सुन रहा है पुशा पुल के आसपास तो आप डॉक्टर कामरान से जाके पूछ सकते हैं कि ये ऑयल कितना इफेक्टिव है। उन्होंने इस्तेमाल किया था शेटिका पेन के अंदर, ये जो एक टांग के ऊपर शुरू होता है हिप्स से ये पेन स्टार्ट होता है और ये चला जाता है टांग तक। दर्द से आजादी का ये जनाब, दर्द से आजादी नेचुरल तरीके के ऊपर हासिल कीजिए भाई। ये बहुत ही प्रीमियम किस्म की हमने प्रोडक्ट बनाई है आप लोगों के लिए और मैं ये कहता हूँ कि हमारी कंपनी को हमारी तो मेहनत थोड़ी बहुत होगी, इस प्रोडक्ट की वजह से मिलने वाली दुआएं हमारी कंपनी को कितने आसमान के ऊपर लेके गई हैं कि ये प्रोडक्ट इतनी जानदार है, इतनी प्यारी प्रोडक्ट है कि जब आप इस्तेमाल करते हैं तो 100% आप सेटिस्फाइड होते हैं कि कम पैसों के अंदर आप इतना रिलीफ

0: लीजिए विदाउट साइड इफेक्ट के। आप जब टेबलेट लेते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, तो आप जब रिलीफ या आराम या सुकून आपको जो मिल रहा होता है ना, वो मुफ्त में नहीं मिल रहा होता, उसकी आप कीमत अदा करते हैं। और वो साइड इफेक्ट की सूरत में उस वक्त की आप कीमत अदा करते हैं कि जितने वक्त के लिए टैबलेट और इंजेक्शन ने आपको सुकून दिया, आराम दिया, वो एमए नहीं था, उसके बदले आप उसका पे करेंगे। और वो साइड इफेक्ट की सूरत में वो आपका मैदे को डिस्टर्ब करेगी, वो आपको जिगर को, वो आपकी किडनी को डिस्टर्ब करेगी। तो जनाब ऑयल की जो थेरेपी होती है, ठीक है जनाब, विदाउट एनी साइड इफेक्ट। और हम आपको कहते हैं कि कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, 5 मिनट लगाने के बाद आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं। और जब आप इसको रेगुलर यूज करेंगे, तकरीबन 1 माह तक इस्तेमाल करेंगे, तो हम ये आपको गारंटी देते हैं कि आपका जो पुराना से पुराना दर्द है ना, वो भी जड़ से खत्म हो चुका होगा। ओमेगा 3, 6 और 9 कुदरती तौर पर शुतुरमुर्ग के तेल के अंदर पाए जाते हैं।
1: पुराना दर्द
0: जो कि क्या करते हैं, जो कि इन्फ्लेमेशन को खत्म करते हैं, यानी कि जो सूजन होती है पट्ठों की, जो हड्डियों की सूजन होती है, उसको बिल्कुल खत्म कर देते हैं। और जब आपके पट्ठों के अंदर सूजन, जो सोजिश होती है, वो खत्म होती है, तो खुद ब खुद आपका दर्द भी खत्म होने लगता है। तो भाई अगर आप जड़ से इन दर्दों का खात्मा चाहते हैं, तो हमारी जरूर मानिएगा और ये प्रोडक्ट जरूर हासिल कीजिएगा, जिसका नाम है केसन शिफाए दर्द। इसको लगाने का तरीकाकार ये है कि थोड़ा सा नीम गर्म करने के बाद आप दिन में 2 से 3 मरतबा मालिश करें, और तकरीबन 3 से 5 मिनट की मालिश करेंगे तो ये ऑयल मुकम्मल तौर पर जज्ब हो जाएगा और आपकी फुर्ती, आपका उठना बैठना, जैसे कि कल मैं आपको बोल रहा था, शाह साहब हैं जरा बनचुंगी से आए हुए थे, कह रहे थे कि मेरी बेगम जो है वो इतने अरसे से इलाज कराती हैं और एक शिफाए दर्द खत्म भी अभी नहीं हुआ और 80% से ज्यादा जो है उनकी रिकवरी हो चुकी है, काम काज करना चलना फिरना आसान हो गया है। तो भी आप अगर सोच रहे हैं तो भाई अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं, ये 700 रुपया अपने ऊपर जरूर लगाइए, ये ऑयल खरीदिए, इस्तेमाल कीजिए और फिर हमें बताइए कितना कितना सुकून देने वाला और कितनी राहत देने वाला, और वो भी बगैर केमिकल के, बगैर साइड इफेक्ट के, ये आपको सुकून पहुंचाता है, दर्द से निजात दिलाता है, दर्द

0: जी जनाब, कहाँ कहाँ अवेलेबल है और आप हमसे राब्ता कर सकते हैं इस प्रोडक्ट के हवाले से, अगर आपको आगाही चाहिए या आप ऑनलाइन हमसे अगर ये प्रोडक्ट मंगवाना चाहते हैं तो हमारा नंबर नोट कर लीजिए जिसके ऊपर आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमसे राब्ता कर सकते हैं, इस प्रोडक्ट को घर बैठे भी आप मंगवा सकते हैं। ठीक है जनाब, अगर आप डेर इस्माइल खान में मौजूद हैं तो डिलीवरी चार्जेस 100 रुपीज़ होते हैं, 100 रुपये डिलीवरी के साथ, ये आपको 800 रुपये में घर तक पहुंचेगा। अगर आप टांग के अंदर मौजूद हैं और टांग में अगर आप ऑनलाइन चाहते हैं और आप किसी दुकान तक आपकी रसाई नहीं है तो तकरीबन 200 डिलीवरी के साथ ये आप तक 900 तक पहुंचेगा। अगर आप पंजाब के एरियाज में मौजूद हैं अगर वहां पर चाहते हैं तो ये डिलीवरी के साथ तकरीबन 900 रुपये में आप तक पहुंचेगा। और अगर पहाड़पुर में मौजूद हैं, और पहाड़पुर में हर जगह मौजूद है वैसे, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जो बाजार जा सके, तो पहाड़पुर में भी आपको डिलीवरी के साथ ये 900 रुपये का ये 60 ml का ऑयल होता है जो आपको मिलेगा। आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और रब्ते के लिए हमारा नंबर नोट कीजिएगा जो कि है 03449363366। जी जनाब, जब अगर मैं इसे सिंपल लफ्जों में बताऊं तो 03444 जी
1: टैबलेट्स को अब कह दो
0: 03444936366। इस नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं और अपना ऑर्डर बुक करवा सकते हैं और घर बैठे ये प्रोडक्ट आप हमसे ले सकते हैं। इसके अलावा जोंग का नंबर भी हमारा नोट कर लीजिएगा, दूसरा हेल्पलाइन नंबर 03137984454। आप इस नंबर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और ये बहुत ही एक करिश्मा है कुदरत का, और ये हमारे हाथ की बनी हुई चीज नहीं है, ये अल्लाह ताला ने एक परिंदा बनाया है, शुतुरमुर्ग जिसको कहते हैं, उसकी चर्बी के अंदर ताकत रखी है, इंसान को ये हिम्मत दी है कि वो जस्तजू करे, कोशिश करे और लोगों तक जो है हम प्रोडक्ट लेके आ सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने फैसला करना है कि क्या आपको ये प्रोडक्ट चाहिए या नहीं चाहिए। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, थोड़ा सा वेट करेंगे, मैं थोड़ा सा जनाब आपको कॉल में
1: सदके संग
0: कॉल में आवाज मुझ तक क्योंकि नहीं पहुंच रही, लेकिन अभी जो है आपकी आवाज भी थोड़ा सा वेट करेंगे जो भी लाइन पर मौजूद है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम खलील सर, क्या हाल है?
0: जी अल्हम्दुलिल्लाह, जी करम है अल्लाह का। कौन है हमारे साथ, नाम बताएंगे जनाब?
2: अंकल
0: असद बात कर रहे हैं। असद
2: अंकल, तबीयत ठीक है? जी
0: जी करम है अल्लाह का। आप माशाल्लाह स्टार्ट में आ गए हमारे साथ और माशाल्लाह आज हम प्रोडक्ट भी उसके ऊपर बात कर रहे हैं जिसने आपको भी माशाल्लाह बहुत सारा फायदा पहुंचा है, तो क्या कहना चाहेंगे? वाकई एक ऐसी प्रोडक्ट है जैसा नक्शा हमने आप लोगों के सामने पेश किया इसका।
2: आज आपकी आवाज कट कट आ रही है, क्या वजह है?
0: अच्छा, ये नेट का इशू होता है बाजू का, मेरी तरफ नेट स्लो हो या उधर हो तो फिर ये थोड़ा बहुत मसला रहता है।
2: अच्छा, एक अर्ज आपके सामीन से करता हूँ अर्ज। ये आपके सामीन जब भी आपके प्रोडक्ट लेकर इस्तेमाल करे ना,
0: हाँ हाँ,
2: तो हाथ पे रख कर अल्लाह पाक से मांगे, या अल्लाह इसमें मेरे लिए शिफा रखे, क्योंकि ये मखलूक है, कुछ नहीं कर सकता, शिफा देने वाले आपकी जात है, तो अल्लाह पाक को बड़ी गैरत आ जाती है और वो इसमें जरूर शिफा डालते हैं, बल्कि फरिश्तों को कहते हैं कि आप कहते थे कि इंसान को पैदा ना करे, देखो मुझी मुझी से मांगता है, मैं कैसी शिफा न डालू।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या प्यारी बात।
2: अगर शिफा बगैर अल्लाह से मांगी का है ना, तो भी अल्लाह पाक रहीम जात है, करीम जात है, वो इसमें शिफा देंगे, लेकिन अल्लाह पाक जरा नाराज हो जाते हैं। अल्लाह पाक से मांग लिया करे कि अल्लाह इसमें मेरे लिए शिफा डाले, जजाकअल्लाह।
0: जी बहुत शुक्रिया, बहुत प्यारा पैगाम आपका, बहुत प्यारा। अंकल असद हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे हैं कि जब केसन की कोई प्रोडक्ट आप खरीदें, स्पेशली जैसे ये, वैसे तो हर प्रोडक्ट ऑयल खरीदने हैं, कोई भी आपकी बीमारी से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है तो अल्लाह ताला से जरूर, बिल्कुल जी, हर काम में अल्लाह ताला का मोहताज इंसान को होना चाहिए, आजिज़ी दिखानी चाहिए। अगर जी आप खुद कर रहे हो, कर तो अल्लाह ताला की ज़ात रही होती है, लेकिन अल्लाह ताला को आजिज़ी जरूर दिखाएं कि भाई अल्लाह ताला ये आपके बगैर हो नहीं सकता और मैं कुछ भी नहीं हूँ, तो अल्लाह ताला उसमें मजीद बरकत डालते हैं। एक और कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो,
3: अस्सलाम वालेकुम।
0: जी वालेकुम सलाम, कौन है हमारे साथ? चाचा फतेह खान जी, कौन है सर नाल मैं?
3: अस्सलाम वालेकुम।
0: जी वालेकुम सलाम,
3: अजीज साहब जवान, क्या हाल है? बकरी का खान हूं।
0: चाचा फतेह खान, किवें हाल है चाचा? ठीक ठाक है वे तुसा?
3: अल्लाह की मेहरबानी, खैर खैरियत है। میں کیا آواز صفا ہے سے کو راجہ غفور کو
0: ہاں بالکل اج بھی راجہ جی بالکل اے شفا در تیل جے رہ اج بھی پہنچا ہے ان کول آرڈر ہے بہت سارا راجہ غفور تے انہاں دے کول ہے سہی
3: بعد پہنچے تو واٹو کو اٹکال کرے نے شام میں دور کال روسی سے پچار سی دریا خان ول جائے
0: اچھا جی ٹھیک ہے
3: اللہ خیر کرے واٹو کو کھنٹی ہوئی سن بٹے پروگرام کرا سن بٹے کار پور تھورا
0: اچھا اپ کو کیویں ٹرانسمیشن ہو کوئی سیٹ کئی ہے
3: اللہ خیر کرے اللہ خیر دے مت کھلا لے اللہ تیری کمپنی کو
0: آمین آمین میں کہ آواز ہن تو پہاڑ پور دی ٹھیک آندی اج کل کہ نہیں آندی اچھا جی چاچا فتح خان پہاڑ پور کو پنجاب سے ہیں اور انہوں نے آج ہمارا پروگرام سن کے ان کو لگ گیا ہے کہ بھئی یہ پروڈکٹ تو میرے گھر میں کسی کو چاہیے تو بالکل جی ہر گھر کے اندر ایسے مریض موجود ہوتے ہیں جو چپ چاپ درد سہ رہے ہوتے ہیں اور آپ لوگ محسوس بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو درد ہے اور ہر بندہ ریڈیو نہیں سنتا اور ہر کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا تو آپ نے ضرور جب جناب ان لوگوں تک پیغام پہنچانا ہے جو ریڈیو نہیں سنتے لیکن وہ درد کو برداشت کر رہے ہیں تو ضرور جناب ہمارے اس پروڈکٹ کو جس کا نام ہے کیسن شفا درد آئل اس کا نام ہے جناب
4: یا نبی یا نبی
0: شتر مرغ کی چربی سے بنا ہوا یہ تیل ہے اور اس کے علاوہ اس کے اندر چند جڑی بوٹیاں ہیں آج کل جو ہے اے آئی کا دور ہے تو لوگ پروگرام سننے کے بعد ضرور اس کو کراس چیک بھی کرتے ہیں کہ کیا واقعی یہ اتنا افیکٹو ہے تو جب بھی آپ اس کو چیک کرنا چاہیں تو یہ صرف آسٹریچ آئل نہیں ہے بلکہ اس کے اندر ونٹر گرین یوکلپٹس آلریسین کیپسیکم کو بھی ایڈ کیا گیا ہے ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کو موقع دیتے ہیں السلام علیکم
5: السلام علیکم سر
0: جی وعلیکم السلام جی کون ہے ہمارے ساتھ
5: سر ریحان سے جمشید بات کر رہا ہوں سر یہ ریحان میں پیشنٹ شفا درد کون سے دکان سے ملے گا کہاں سے ملے گا
0: یہ آپ کو مل جائے گا جناب چگلا کے ساتھ ہماری اپنی شاپ کے اوپر بھی آپ آ سکتے ہیں کمرشل مارکیٹ کے پیچھے ہے اکبر پلازا ٹھیک ہے جی وہاں پر ہے کیسن شاپ ہماری مین آؤٹ لیٹ ہے تو وہاں پر جائیں گے تو چیز آپ کو ریاض کے ساتھ مل جائے گی اس کے علاوہ اگر آپ کہیں اور رہتے ہیں شہر سے دور تو نہیں رہتے آپ
5: سر یہ شیو سے وڈے پر
0: بس شیو سے وڈے پر رہتے ہیں تو پھر آپ کو ادھر آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے شیو سے وڈے کے اوپر مزار والی گلی میں عمر جنرل اسٹور ہے ہاں بس ان کے پاس چلے جائیں اور پہلے ان سے پوچھیں کہ بھائی یہ تیل واقعی زبردست ہے وہ اگر آپ کو تسلی دیں تو پھر آپ نے لینا ہے ٹھیک ہے تو ان کے پاس ہے وہاں پر بھی آپ ان سے بھی لے سکتے ہیں بہت زیادہ ہمارا سیل ہوتا ہے الحمدللہ وہاں پر
5: بس سر یہ پٹھوں کا مسئلہ ہے تھوڑا سا درد رہتا ہے ہر وقت
0: بس تھوڑا سا درد رہتا ہے تو بھائی یہ تو پھر آپ دو دن لگائیں گے تو انشاءاللہ ہمیں دعائیں کریں گے پھر کال کر کے ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو کتنا ریلیف ملا ہے ٹھیک ہے بھائی جان بنگش میڈیکل اسٹور ہے جناب ہاسپٹل کے سامنے آپ وہاں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں گھاس منڈی کے ساتھ دواخانے ہیں توپوں والے بازار کے اندر عرفان دواخانہ ہے آپ وہاں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں چگلے کے ساتھ المشہور دواخانہ ہے مشہور دواخانہ کے نام سے آپ وہاں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جناب اور اگر آپ یہ ڈیرا کی ہم بات کر رہے ہیں ویسے الفرید کاسمیٹک مکہ کاسمیٹک فیملی شاپنگ سینٹر یا پھر ساتھ میں جو اور ہیں دکانیں جیسے کہ امان ہارسیرا فاروق ہارسیرا ان سب کے پاس آپ کو کسن کی پروڈکٹ ملتی ہیں ہماری اپنی جو مین آؤٹ لیٹ ہے وہاں پر آنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو چیز مارکیٹ سے سستی بھی ملتی ہے اچھا جو ہماری دوسری پروڈکٹ ہے نا جو کہ ہاضمے کے لیے ہے اس کا میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ وہ اس کے دو بڑے کام ہیں ایک تو وہ بھو ایز اے اپیٹائزر آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جناب لیکن اس کا طریقہ کار پھر مختلف ہے اگر میدے کا مسئلہ ہے ٹھیک ہے جناب تیزابیت ہے سینے کی جلن ہے تو اس کا طریقہ کار اور ہے کہ وہ آپ نے کھانے کے بعد دو چمچ لینے ہوتے ہیں اگر آپ کو بدہضمی ہے گیس کا مسئلہ ہے ٹھیک ہے جناب آپ کو بدہضمی گیس کھٹی ڈکاریں آتی ہیں بوجھ سا محسوس ہوتا ہے پیٹ سوج جاتا ہے اس میں آپ کھانے کے بعد آپ نے دو چمچ لینے یہ ان لوگوں کے لیے جن کو میدے کے مسائل ہیں یا سینے کے اندر جلن ہوتی ہے کھانے کھانے کے بعد تو لیکن جن کو بھوک نہیں لگتی بھائی یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ دو علیحدہ سے فارمولے ہوتے ہیں ایک اپیٹائزر ہوتا ہے ایک اینٹاسڈ ہوتا ہے اپیٹائزر وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کو بھوک لگاتی ہے جب آپ پئیں گے اینٹاسڈ وہ ہوتا ہے جو آپ کے میدے کے مسائل کے لیے ہوتا ہے لیکن ہم نے یہ ڈوئل موڈ افیکشن میں پروڈکٹ تیار کی ہوئی ہے یعنی کہ آپ اسے بھوک کے لیے الگ سے استعمال کریں یعنی کہ بھوک کا اگر مسئلہ ہے تو آپ کھانا کھانے سے ایک گھنٹہ پہلے اس کے دو چمچ لے لیں یعنی کہ دوپہر کا کھانا آپ نے ایک بجے کھانا ہے نا तो आप 11:30 बजे या 11 बजे 2 चम्मच केक खा लें, आपको शदीद किस्म की भूख लग जाएगी 1 बजे तक। और अगर रात का खाना खाना है तो जनाब असर के बाद या मगरिब के बाद, यानी कि आपको आप खाने के रूटीन का पता होगा, आपको पता है कि आप 8 बजे खाते हैं या 9 बजे खाते हैं या 10 बजे खाते हैं, उससे 1 घंटा पहले आप 2 चम्मच हमारे हाजमा कंट्रोल सिरप के ले लें। आप यकीन कीजिए कि ऐसी शानदार किस्म की आपको भूख लगेगी कि घर वाले भी एक दफा तो परेशान हो जाएंगे कि अब क्या करें, तुम्हारे लिए जो है राशन ज्यादा कर लें, क्योंकि ये इतनी जबरदस्त भूख लगाने वाला प्रोडक्ट है। एट वन टाइम ये बिल्कुल एज ए एंटी एसिड भी काम करता है और एपेटाइजर के लिए। तो जनाब 150 रुपए हमने इसकी कीमत की है, मिक्स ना हो जाए बातें भाई, वो शिफाय दर्द आयल अलहदा है और ये जो हाजमा सिरप है ये अलहदा से मैं उसके बता रहा हूँ। तो अगर आप टांक में सुन रहे हैं तो सदाम प्लाजा है जनाब, सदाम प्लाजा के अंदर है मंसूर जनरल स्टोर,
6: बेहतर सर क्यों,
0: मंसूर जनरल स्टोर टांग के अंदर है जनाब, वहां पर आप हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा बिलाल मार्केट में नसीम जनरल स्टोर है, या छोटे बड़े और दुकानें हैं, अरबाब जनरल स्टोर है, सैयद बेकर्स है, इमरान जनरल स्टोर है। तो जनाब एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम।
7: वालेकुम खलील भाई, क्या हाल
0: है? अल्हम्दुलिल्लाह सही, तुसा सुनाओ ठीक ठाक ही वे, चंगे वदे वे माशाल्लाह,
7: अल्लाह की मेहरबानी शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोग्राम सुन लेते हैं, चाय नाल नाल शुरू है अल्हम्दुलिल्लाह।
0: अच्छा चाय भी नाल नाल पीने वदे, वैसे गाल ठीक है कि चाय नाल रेत और खत्म थी वेंदी है
7: जी,
0: मैं कि एक गाल ठीक है कि चाय पीवन नाल तरे मर वेंदी है,
7: शायद एक प्यास नहीं बुझदी बल्कि थोड़ा इंसान को हां खाली होता है, ये समझे नहीं जैसा पानी भी पी ही गए तो भूख भी जो रहे ना कम पूरी करेंगे, एक दो शन जो रहे ना ये बिल्कुल भूख ही नहीं लगती तो त्रे ही नहीं लगती, ईदा खास जो रहे ना एक ये असरात ही भूख बिल्कुल
0: बिल्कुल बिल्कुल सही
7: है, बाकी माशाल्लाह जो रहे ना आत्मा कंट्रोल ए सारे साहब जो पट्ठे हुई या साडे जोड़ हुई इन्हों की कोई खास है ठीक है, एज बंदा कमजोर थी लेकिन आजकल नौजवान 12 साल 14 साल को जो 20 साल के अंदर जो रहे ना उन्होंने ये जोड़ा का मसला है, असल खुराकों का फर्क है साहब, मिसाल जाती बहुत ज्यादा तेज मिसाल खाना, ज्यादा नमक का इस्तेमाल करना, मर्च ज्यादा खानी, मीठा ज्यादा अच्छा इस्तेमाल, पत्ती ज्यादा इस्तेमाल करनी, ये त्रे चार शुरू बड़े नुकसान देने, पहले मेदे के असर करें मैदा जल्द खराब थी तो वो हर आजा को नुकसान पहुंचाएगा, तो पहले मैदा का इलाज करो हाजमा कंट्रोल इंशाल्लाह ये करो, मैदा सेट हो सी तो जोड़ भी सेट हो सी, लेकिन जोड़ों के नाल नाल जो कोई जोड़ों की तकलीफ है सारा काफी इंशाल्लाह तजर्बा है, जो एक ज्यादा चाय पीवा नाल सिर्फ अपने मकसद के मारे प्याला या दू प्याले बस खालसा, लेकिन पत्ती थोड़ी घट हो गए मिठी घट हो गए जरूरत पे अपने मैदे को सेट करो तो इंशाल्लाह सारा निजाम सेट हो सी, बाकी सारे सुनने को सलाम नजर हसन को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।
0: बहुत शुक्रिया जनाब शबरा उस्ताद हमारे साथ केस से मौजूद थे और हमारे प्रोडक्ट्स को माशाल्लाह बखूबी जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, लोगों को बताते भी हैं, इनके इलाके में केस के अंदर शानी मोबाइल जोन हमारा सेल पॉइंट है, वहां से भी हासिल कर सकते हैं, हमारे प्रोग्राम में हिस्सा बन सकते हैं आप, कॉल कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, और कॉल और SMS करने के लिए हमारा नंबर आप लोगों के पास मौजूद है 03449363366 के साथ, और हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद हैं, उनको हम इस पर मौका देते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम, हेलो हेलो हेलो, जी आवाज आ रही है आपको, आके जनाब फिर से कॉल कीजिएगा हमें, और फिर से जब कॉल करेंगे तो डेफिनेटली आप की कॉल जो है हम ले पाएंगे, और कॉल करने के लिए हमारा नंबर 03449363366। किशन के बहुत सारे प्रोडक्ट इस वक्त आप लोगों के पास मौजूद हैं जो आप इस्तेमाल कर रहे होंगे, बेसिकली तो हमारी कंपनी जो है कॉस्मेटिक कंपनी है, लेकिन जो है हमारे हेल्थ के भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, और हेल्थ के प्रोडक्ट जैसे कि अगर आपको जोड़ों का मसला है तो हमारा जो है शिफाय दर्द ऑयल मौजूद है। इसके अलावा अगर आपको मैदे के अमराज हैं तो हमारा जो है हाजमा कंट्रोल सीरम मौजूद है, और अगर आपको मोटापे का शिकार हैं तो वेट कम पेट कम आप इस्तेमाल करके अपने एक्स्ट्रा चर्बी को पिघला कर जनाब स्लिम एंड स्मार्ट बन सकते हैं। कॉलर है हमारे साथ, जी अस्सलाम वालेकुम।
8: वालेकुम सलाम, पता नहीं नेट का इशू था, आवाज नहीं आ रही।
0: हाँ, आवाज नहीं आ रही। कैसी हैं आप हमारे साथ? सोना आप ही आ चुकी हैं, हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, कैसी हैं आप?
8: अल्हम्दुलिल्लाह, आज तो मैं शीशे में ना अपने आप को देख के भी हैरान हो गए, लोग तो होते हैं ना।
0: अच्छा, वो कैसे?
8: वो ऐसे आपकी ग्लूटामाइट और आपका जो मिल्की
0: है, वाकई ये मतलब
8: इतना वाइट किया है ना मुझे, वह खुद देख मैंने जब मुंह धोना होता है, बेटियां आई होती है, मैंने कहा मुंह धोना, उसका अम्मी आपको क्या जरूरत है, आपने मुंह नहीं धोया, इतनी तो वाइट।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह, वैसे आप तो
8: वाइट नहीं तो रह गई ना, और जो चेहरे पे मासूमियत आ गई है, धूप का भी असर नहीं होता है।
0: ये बेनिफिट तो हमने कभी नहीं बताया, मासूमियत वाला आज से बताएंगे हम, चेहरे को मासूम भी बनाते हैं। किसने
8: बात सुने ना, आप जब कहते हैं ना भाई 16-17 साल की उम्र की लड़कियां ये ग्लूटामाइट लगाएं, मेरी जो स्किन है ना, अगर मैं नाइट क्रीम कोई भी लगाऊं, कभी पहले तो फर्स्ट टाइम लगाई नहीं, अगर एक बार लगाई थी आपकी तो मेरे पोर्स ओपन हो जाते हैं। इस क्रीम ने कोई असर भी नहीं किया, साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं किया, और वो क्रीम भी जबरदस्त है, वो मेरी बेटियां यूज करती हैं, ये अपनी अपनी स्किन पर होता है, और मुझ में बीमारी भी तो है ना, तो उसका भी तो असर होता होगा ना,
0: उसका भी होता है,
8: इसलिए ये।
0: लेकिन ग्लूटा मेरे ख्याल में हमारी स्वाना भी मेरे पास सुने, हमारे मिल्की सोप के बाद जिस प्रोडक्ट ने आपको बहुत ज्यादा मुतासिर किया है ना, वो हमारा यही प्रोडक्ट है, गोट मिल्क सॉरी हमारी ग्लूटा क्रीम, क्योंकि आप जिस तेजी के साथ लेने आती हैं माशाल्लाह, और जितना आप बोलती हैं उस प्रोडक्ट के ऊपर जो सच्ची मुच्ची आपको बहुत रिजल्ट देता है, तो मैं ये समझता हूँ कि मिल्की के बाद सबसे ज्यादा आपको रिजल्ट हमारी इस प्रोडक्ट ने दिया, ऐसी है बात?
8: मैं जो डे क्रीम यूज करती थी ना, मैं करती थी वो ब्लू एंड व्हाइट, तो जब से मुझे ये हुए थे ना छाइयां, तो आपने ये मुझे बताई थी ले जाए, बस उसे मैंने ऐसे फेंक दिया, उसकी शक्ल भी नहीं देखी, और इसको रेगुलर ये एक दिन खत्म होती है दूसरे दिन मैं जाके ले आती
0: हूँ।
8: और आपकी वो कस्टमर भी माशाल्लाह इधर ही जैसे क्रीम खत्म होती है पैसे ले आती है, जाए मेरी ले आए, वो जो आपको मैंने कहा था जिसकी स्किन मछली टाइप है, तराने थी उसकी, बिल्कुल क्लियर, ऐसे फेस इतना क्लियर हो गया और व्हाइट, वो उस क्रीम के बगैर नहीं रह सकती।
0: वो कौन सी क्रीम? वो हमारी केसन की नाइट क्रीम इस्तेमाल कर,
8: वो नाइट क्रीम है, नाइट क्रीम, और नाइट बंडल जो जो जिस जिसको मैंने दिया है उन्होंने भी दोबारा खुद ही जाके रिपीट, पता नहीं किधर किधर से लेते।
0: अच्छा सोना भी, आपने बहुत ज्यादा हमसे नाइट बंडल खरीदे हैं, जरूरी बात है, बहुत सारे लोगों को दिए हैं, तो ये पहली दफा केसन वो वाहिद कंपनी है कि जिसने कहा है कि भाई अपने चेहरे की हिफाजत इस तरह करें कि पहले साबुन से चेहरा धोएं, फिर ब्यूटी स्प्रे लगाएं, फिर क्रीम लगाएं।
8: जी जी, किसी प्रोडक्ट के पीछे इतनी नहीं लगी ना, किसी का मुंह देखती हूँ ना तो फौरन आपकी कंपनी का, मैं कहती हूँ किसी का फायदा हो जाए, सदका जारी है, कभी किसी के इस चीज का मैंने नहीं कहा, डरती हूँ जो कहीं साइड इफेक्ट ना हो, लेकिन इस पर मैं आंखें बंद करके कलमे की शहादत देके अगले बंदे को कहती हूँ ये चीज ले, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे।
0: बिल्कुल, तो मैं बात कर रहा था सोना आपकी, मैंने कहा आपने
8: अभी बात कर रहे थे ना गैस वाली सिरप की, वो आपने फ्री दिया था, तो वो मेरी बेटी को तो हर वक्त होता है ना, वो ऐसे पी गए जैसे कोई मशरूब हो, और माशाल्लाह से उसको अच्छा रिजल्ट मिला।
0: ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका सोहाना पी, आप हमारे साथ मौजूद हैं डेरा इस्माइल खान से। और सामिन इकराम, सोहाना पी जो है आप खुद भी यूज करती हैं, लोगों को भी यूज करवाती हैं अपने फैमिली के अंदर, क्योंकि बहुत सारे लोग माशाल्लाह इनकी बच्चियां जवान हैं, शादियां हो चुकी हैं उनकी, लेकिन इनको आप देखेंगे तो बिल्कुल सी यंग लगती हैं, बिल्कुल आवाज से भी आपको लग रहा होगा, लेकिन यकीन कीजिए ये केसन की यूजर है, कोई और चीज यूज नहीं करती, और लोग इनको देखकर, देखें नौजवान या यंग लड़की, कोई इतनी हैरान कुन बात नहीं होती कि कोई 17 साल की लड़की प्यारी लग रही हो, 20 साल की लड़की प्यारी लग रही हो, जब शादीशुदा बच्चियों की माँ अगर इतनी जवान नजर आ रही हो तो लोग जरूर पूछते हैं कि भाई क्या लगाती हो, तो जो भी इनसे पूछता है तो ये बोलती है केसन का सोप, केसन की क्रीम, केसन का सोप, केसन की क्रीम, और ये हमारा चलती फिरती एडवर्टीजमेंट है, यकीन कीजिए चलती फिरती एडवर्टीजमेंट है। और इतने ज्यादा लोग, एक मैं ये कहूंगा कि एक हमारी पठान यूजर है सुंबल, सुंबल महसूद उनका नाम है, लगारी गेट के पास रहती है, उन्होंने बहुत ज्यादा लोग हमारी तरफ भेजे, और वो कोई भी आता है तो बताते हैं ये सुंबल ने हमें आपका रेफरेंस दिया है, सुंबल महसूद ने हमें बताया, सुंबल ने। तो एक दफा मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे बताती हैं लोगों, कहते मैंने कभी भी किसी को नहीं बताया, लेकिन लोग मेरी स्किन को देखकर मुझसे पूछते हैं कि क्या इस्तेमाल करती हूँ, तो डेफिनेटली मैं उनको बताती हूँ मैं तो केसन के प्रोडक्ट इस्तेमाल करती हूँ, तो वो फिर नंबर मांग देते हैं आपका और फिर आपकी तरफ पहुंच जाते हैं। मैंने कभी को किसी को पकड़ कर नहीं बोला कि मेरी बहन तुम केसन की करी, लेकिन जब लोग मजबूर करते हैं कि इन बालों का राज बताओ, इन रुखसार का, इन गालों का राज बताओ, तो फिर मैं यकीनन उनको बताती हूँ कि केसन कंपनी है। और दूसरा जो हमारे पास ज्यादातर लोग हमारी शॉप पर आते हैं वो यही रेफरेंस होता है, सुहाना अपी ने हमें भेजा, उन्होंने कहा है कि आप इनके पास जाएं। तो ये दो लोग, इनका हम दिल से शुक्रगुजार हैं कि भाई ये ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हमारे, जहाँ चलती फिरते केसन की मशहूरी है, लोग इनको देखते हैं, इनकी खूबसूरती को देखते हैं, इनकी स्किन को देखते हैं, इनके बालों को देखते हैं और पूछते हैं भाई इतनी उम्र में इतने प्यारे कैसे रह गए। तो आगे से ये बताते हैं, ये केसन की कहानी है जनाब, केसन की कहानी
9: पुराने से पुराना
0: जनाब, केसन की कहानी जुल्फ और रुखसार की कहानी है।

0: जी जनाब, केसन शिफा दर्द और केसन का टी टाइम शो सुन रहे हैं खलील दाबे शमान के साथ ग्लोबल एफएम 91 डेरा इस्माइल खान, रेडियो पैगाम 97.4 पहाड़पुर और रेडियो अमन 88.4 ट्रांक से बिल्कुल बयक वक्त बराह रास्त एक साथ। सलाम भाई, कैसे हो? कैसे हो उसैरम और हुसैन कशफ, कैसे हैं भाई? प्लीज अच्छा जी भाई, प्लीज गुस्सा मत कीजिएगा, बताओ कि अब हमारे ग्रुप खत्म हो गए हैं। अरुबा आप ही रानी परी को मेरा सलाम जी। कब के खत्म हो गए वो तो शो, वो तो ग्रुप कब के खत्म हो गए? हमारे फातिमा पाटपुर से मौजूद थी। साम्राज्य का डर समाज का डर उन्हें होना चाहिए जो सरकार के ठोकर पे टुकड़ों पर पलते हैं। हम तो भाई जी हैं सारे आम बगावत करते हैं। रोनी फ्रॉम पाल, अमिताभ बच्चन को, अमिताभ बच्चन को बुलाना था इस डायलॉग को पढ़ने के लिए।
1: जिस्म में डाले नहीं।
0: रोनी फ्रॉम पहाड़पुर भाई, शो और शो अच्छा है। ऐसो भाई शो आज भी पहले से बेस्ट है। आपने अभी तक नहीं बताया कि आपकी शॉप कहाँ पर है। और भाई आज एक शेर तो सुना दो, सब लिसनर्स को सलाम है जनाब। हमारी शॉप डेरा इस्माइल खान में चुगल्ला के साथ है, मियां कमर्शियल मार्केट। और मियां कमर्शियल मार्केट के बैक साइड के ऊपर जैसे आप निकलते हैं तो है अकबर प्लाजा, जहां पर फाइन कलात वाला बैठा हुआ है, उसे पूछ लें केसन शॉप कौन सी है। बिल्कुल फ्रंट में जैसे अकबर प्लाजा के गेट के ऊपर ठहरेंगे ना, तो नाक की सीध में देखेंगे तो सामने बिल्कुल केसन शॉप है लिखा हुआ, प्यारा लगना तो आप सब कहा क्या समझ जो कि जनाब यही वही दुकान है जो लोगों को प्यारा बनाती है। ठीक है जनाब। तो रोनी मैंने तुम्हें बता दिया कि हम कहाँ रहते हैं।

0: Welcome to Radio Aman 88.4.
1: You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
3: क्या आप बालों के गिरने, खुश्की और कमजोर बालों से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़ दें, क्योंकि आ गया है डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू आपके बालों की मुकम्मल हिफाजत के लिए। कुदरती अज्जा से तैयार करदा बालों की जड़ों को मजबूत बनाएं, बालों को दे कुदरती चमक और नरमी, खुश्की और हेयर फॉल में मददगार। डॉक्टर जैन हेयर ऑयल आपके बालों को इजायत फराहम करें, जबकि डॉक्टर जैन शैम्पू गहराई से साफ करके ताजगी देता है। सिर्फ चंद हफ्तों के इस्तेमाल के बाद महसूस करें मजबूत, घने और सेहतमंद बाल। अपनी खूबसूरती में इजाफा करें और अपने बालों को दें बेहतरीन केयर। आज ही इस्तेमाल करें डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू, क्योंकि खूबसूरत बाल आपकी पहचान है। तो पता याद रखिए, हमजा जनरल स्टोर, न्यू बनारसी होटल, टांग सिटी। मोबाइल नंबर 0344-93-63-780, व्हाट्सएप नंबर 0342-26-48-435।
0: Rocket, wake up, man. 88.4 down.

0: Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair.
3: Devirtano kula. 8:07 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
0: Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
4: के पास है इसका सलूशन। इनकी क्रीम हमारी स्किन को नेचुरल ग्लो देती है और हमारी स्किन को क्लीन करती है। इनका फेस वॉश हमारी स्किन को ब्राइटर और स्मूथ बनाता है। ये सीरम डार्क स्पॉट डेड स्किन सेल्स को रिमूव करता है। तो पहले अप्लाई करते हैं इनका फेस वॉश। 20 to 30 seconds आपने फेस वॉश को स्क्रब करना है। वॉश करने के बाद आप मेरे फेस पे ब्राइटनेस चेक करें, कितना स्मूथ, कितना ग्लोइंग लुक दे रहा है। तो ये है इनका सीरम जो हमारी एक्ने को, डार्क स्पॉट और डेड स्किन सेल्स को रिड्यूस करता है और हमें नेचुरल ग्लो देने में मजीद हेल्प करता है, हमारी स्किन को मजीद स्मूथ बनाता है। इसके साथ साथ परमानेंट की तरफ से हमें मिलती है ब्लीच, जिससे हमारे ब्लैक एंड व्हाइट हेड्स रिमूव होते हैं। और ये क्रीम हमें नाइट में डेली अप्लाई करनी है, जिसके हमारे फेस पे बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं। परमानेंट ब्रांड के ये सभी प्रोडक्ट मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू फॉर सेंडिंग मी दिस अमेजिंग पीआर। बाय।

0: ओके सी परुण महाम पमंडा मंडरातलो वेताल में नो टेंशन रावड़ी सी नेक्स्ट कलर आप दिशु गुरु सुगिर असर आओ देखम जेने दी हाँ सलाम अलैकुम
1: वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह व बरकातहू
0: जी जनाब सु खबर है खबर देखम जेने शेख
1: दरेना
0: गुल उस्ताद गुल उस्ताद हर केले से निमिष आयो शेख जी बास जवंद तेरी शेख गुल उस्ताद में
1: जवंद तेरी जी टेम
0: आओ के नमस्ते आसो को नहीं नहीं
1: خدے
0: رہو جائے گا.

आपकी बाबी भी एफएम सुन रही हैं, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। देर से आते मैंने ना जमीन के बाबी और कहने से जमीन के बाबी होते माशाल्लाह समझ उम पड़ा के दे कहने से समझ उम पड़े के देसी और चुकुम देखे ना आगा दशा खबर भी मर गए हम पचाप फिर जो नहीं कहने से और चुकुम देखे ना बाहर गल सी जमीन के बाबी देखो तुम्हारा शुम पड़ा की जमा तुम्हारा शुम पड़े के नो लगे लगे हर्षी का वाशा लगे लगे हर्षी को गुरी और लगे चिकन मदद खेर सरा पैसे लगवा और पैसे चुकुम दे गुरी ठूल शेष दाम आशा दखल गुरु पैदगी जी पजान लगे खर्च का गुरे लगे खर्चा खरीदे पर मुंगे का वासी और लगे दी पतास हम कभी खेर देखे ना जी देर मने ना सी दुमना पशुम पड़क मासुक ने उली दिली लगे सुख लगे दुमगा बाबी खा

ओके सी नेक्स्ट कलर ऑफ द शो. अस्सलाम वालेकुम. ओके तस रेडियो अनकड़े वैसे रेडियो बंद हुए खास. अस्सलाम वालेकुम भाईजान, वेलकम टू दी नोटेंशन ब्यूटीफुल शो. और आपको स्पेशल सलाम मेरी तरफ से, सब सिस्टर को सलाम. और भाई जान आपको 10 बजे टाइम बहुत बहुत मुबारक है. सब सिस्टर को सलाम मुबारक शाजी अमर वडेर मनाने से खुशहाल है. अच्छा नूर कॉल से कम देखे ना अरे तमक हुए खास हुई सी मिस रगले आशा मिलो मन से खबर नूर को से अगेन पास से कम देखे ना बेटा सुसन अज गपशप पे लगो मत 11 बजे ना बात खास. और सलामुना भाई जान सिंह है हरे वाह भाई, बहुत टाइम बाद नोटेंशन पूरा घंटा शो में वेलकम कहते हैं भाई. बहुत मजा आ रहे हैं, इतना मजा कि इतना मजा का कि शो भी आधी रात में भी मैंने बहुत ज्यादा वेट किया था कि शो कब घंटा होगा. आज बहुत ज्यादा खुश हूँ. आई एम नोटेंशन फैन मनाल बफरीदी डेरे मरना से मखुरी खुशहाल है.